शांति शांति शांति ही। हरि ही ओम तत्सत। श्री ओम श्री साई राम। ऑफरिंग मोस्ट हम्बल प्रणाम्स एट द डिवाइन लोटस फीट ऑफ आवर बिलवेड भगवान, इनवोकिंग भगवान्स बेनिडिक्शन फॉर

हरि ओम तत्सत श्री साईश्वरार्पणमस्तु। बाय द डिवाइन ग्रेस ऑफ भगवान वी आर स्टडीइंग द उपनिषदिक शांति मंत्रस। इन दिस सीरीज वी हैव कंप्लीटेड द स्टडी ऑफ टू शांति मंत्रस, ओम सहना ववतु एंड तच्छयोरा वृणीमहे। And last week we started the study of Om Purnamadah Purnamidam. Today let us first listen to the chanting of this mantra and then look at the meaning.

है शीश जो प्रभु चरण में वंदन किया करे, बेकार वो मुख है, बेकार वो मुख है जो रहे।

वते गुरु कौरस पूर्णाय फलापूप प्रियाय च ताता माणिक्य हस्ताय मंगलम श्री हनुमते सुवर्चलाकलत्राय चतुर्भुजधराय च पुष्ट्रारूढाय वीराय मंगलम श्री हनुमते दिव्यमंगल देहाय पीतांबरधराय च तप्त कांचन वर्णाय मंगलम श्री हनुमते